दुखियं अनक हत्यं जनम दरिद्रं माम भुखियादं मिटाते सकल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ बस भंग।

0: प्रसादे अरोग कंचन देही
1: लिवलावो तिस राम सनेही
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल सिद्र ठाके
1: मन चरनी पर ठाकर प्रभु ताके
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुँचे
1: मन सा सा सिमरो प्रभु ऊचे
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
1: नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद या भूखन पहरीजे
1: मन ते सिमरत क्यों आलस कीजे
0: जय प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी
1: मन ते प्रभु को कबू न

0: प्रभु बने आई।
1: साधक संग न कबहू तावे,
0: साधक संग सदा सुख पावे।
1: साधु संग बस्तर गोचर लहे,
0: साधु के संग अजर सहै।
1: साधक संग बसै थानी उच्चे,
0: साधु के संग महल पहुँचे।
1: साधक संग दृढ़ सब धर्म,
0: साधक संग केवल पार ब्रह्म।
1: साधक संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु कै करवान।
1: साधक संग सब कुल उधार,
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार।
1: साधु के संग सोतन पावे,
0: जिस तन दे सब को बरसावे।

0: सहज स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तारे ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समा

0: करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी देख बुरा न पाया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी।

0: निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर।

0: नेत्र
1: साय की टहल संग संगेत
0: कर्ण सुने काहु की निंदा
1: सबते जाने आपस को मंदा
0: और प्रसाद भिख्या पर हरे
1: मन की वासना मांगते तरे
0: इंद्री जित पंच रोग ते रहत
1: नाने कोट को देखो ऐसा
0: वैष्णो सो जी सुपर सो प्रसन्न
1: जिसकी माया ते होए पिन
0: कर्म करत हो वे नहि कर्म
1: जिस वैष्णो का निर्मल तरम
0: काहु फल की इच्छा नहीं बाछे
1: केवल भगत कीर्तन संग राचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल आव दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानक वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल ते आगे दुष्ट का संग
0: मन ते बिन सह सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंती की टहल करे नित नीत हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन पर बुद्ध है
1: राम नाम आत्म में शुद्ध
0: राम नाम सार रस पीवे
1: पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जो ना आवे
0: वेद पुराण सिमरत बुझे मूल
1: में जाने अस्तूल
0: चौ वर्णा को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा देश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
1: चौ वर्णा में जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गत होए कर कृपा अंतर उतारे
1: प्रेत मुगत पाथर को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: काहू जुगत कित न पाई है धर्म
1: किस मिले जिस लिखिया तुर करम
0: जिसके मान पार ब्रह्म का निवास
1: नाम सतनाम दास
0: आत्म राम किस नदरी आया
1: बाद संतन पाए तिन पाया
0: नित सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास दरगे परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: जिस दास को सब सोची परे
0: सगल संग आत्म

0: के श्रोते,
1: कई कोर तपीसर होते।
2: आत्मिन कोर कई कोट पर धर्म को हिरिया, कई कोट पर दुखना करया,
3: कई कोट माया शरम माए,
0: कई कोट पर देश परमाहे। नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, कई कोट राजस्थान सातक,

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै।

ताको कृपा हन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो हितेती। तुमरा लखा न जाए पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट भयो संकरी कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। आव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तन कमै हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा।

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किलबिक सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता श्री अस्तु जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावे सोई दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िला सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौ पई को कहै चौ पई संबत सत्रह है सहस पणिजय अर्ध सहस पुन तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया

सिमृत शास्त्र वेद सब बहु वेद कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तो ही बखान्यो दोहरा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोता गावो हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों

आप सिमर स्वामी सोए वेद सिमृत कथा सासुत भगत करह विचार मुकत पाइए साध संगत बिन सुजाई अंधार

कवनुष्ठानी गर्भगण में जिने उबाया पर जोवन भोजन सुख सूर मुखो पे आओ बैठ को दैन बख्श लियो तो नानक सीजे सूत प्राप्त मीत बिनता संग से सुखदाई पर पाप कमला सकल समग्र संसार बसा किसे त्याग और संरचना

ज्ञानग्रहकणारम्भार साचोषूरसंमचे योः मनसो दूरपराने संसह इति स्परहरे गतग्रीपसं संघोये नानकाल्यो प्रभुदयाल लोक बचारा करे दिन रात शपथ वाचन करे छपाया अंतर व्यापे लोक स्वान गल पात्र कैसे करे अथा नानक तेजन सह समाज कर गले उड़ निभावे किसके ये तो समझे पोरा यतन करे तो फिर सुर पांग नहीं होत हुआ उनका मन

0: पाछे पावे।
1: एक बस कारण भी खोट गवावे।
0: एक भी ना दे दस भी हिर ले।
2: तो मुड़ा को कहा करे।
0: जिस ठाकुर सो ना ही चारा।
2: ठाको की जय सत नमस्कार।
0: जाका मन लागा प्रभ मीठा।
2: सर सुता मन उठा।
0: इस जन अपना हुक्म मनाए।
2: सर तो नान किन पाया।
0: गंत साहो अपनी दे रास।
2: बात भी कर दे नंद उलास।
0: अपनी अमान कछ बहु साह ले।
2: अज्ञानी मनोस करे।
0: अपनी प्रतीत आप ही

0: जो खेती जाए।
1: भजन बिन बिते सब काम
0: जो कृपन के नार दाम।
1: नानदा जे जत जेत कटियो बसियो हर नाम।
0: नानक तागे बलव जाओ।
1: रहत अवर कच अवर कमावत
0: माने प्रीत मुखो मंडलावत।
1: जानन हर प्रभु बर बीन
0: बार बेर नका उपीन।
1: अवर उपदेश आप ना करे
0: आओ जाव जन में मरे।
1: जिसके अंतर बसे निरंकार
0: इसकी सीख तरह संसार।
1: नानक
0: कुंजन चरण प्राता
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने।
0: अपना किया आपे माने
1: आपे आप करत न बेरा।
0: इसे दूर जनावत इसे बुझावत नेरा।
1: पाप सियानब सकल ते रहत
0: सब को जाने आत्म की रहत।
1: जिस भावे तिस ले लड़ लाए
0: आंत न

ऐसा प्रभु त्याग और कतला को प्रसाद नारायण पंजा को प्रसाद तुम प्रकट संसार।

0: ते कमल विगास
1: प्रसन्न प्रसाद मंजूए
0: बल्कि आते मत उत्तम होए
1: संविधान प्रभु तेरी
0: माया आपको कुछ न कि डोले।

0: के संग मुख कुछ जल होत,
1: साध संबंध सब लीक होत,
0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: साध के संग पूजे प्रभ नेरा,
1: साध संग सब होत नवेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा भरने को प्राणी,
1: नान साध की शोभा प्रमाए समानी,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा भर भूले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस कुंज,
0: साध संग होए सब की रहन,
1: साध के संग मनोहर पहन,
0: साध के संग ना कतु तावे,
1: साध संग असत मन पावे,
0: साध के संग माय ते पीन,
1: साध संग नान प्रभु सो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सब मीत,
1: साधु के संग महाबनीत,
0: साध संग किसी नहीं बैर,
1: साध के संग न बीगा पैर,
0: साध के संग ना ही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंदा,
0: साध के संग नहीं होता,
1: साध के संग सजे स्वभाव,
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बनाई,
0: साध के संग ना कबूत आवे,
1: साध संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस अगोचर ले,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग विरे सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: नानक साधु के कुर्बान,
0: साध के संग सब गुरु धारे,
1: साध संग साधन मीट कुटुंब निसारे,
0: साधु के संग सो तन पावे,
1: संदे सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग शोभा सुरदेवा,
0: साधु के संग पाप लायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सरब थान गमन,
1: नानक साध के संग सब जनम,
0: साध के संग नहीं किछ काल, साध के संग कलुकत हरे,
1: साध के संग नर पर हरे,
0: साध के संग यहाँ उहाँ सहिला,
1: साध संग मिश्र तन मेला,
0: जो इच्छे सो ही फल पावे,
1: साध के संग निर्मलता जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे, साध के संग सुनो हर नाव,
1: साध संग हर के गुणगान,
0: साध के संग ना मन ते बिसरे,
1: साध संग सर पर निसरे,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साधु के संग गढ़ गढ़ डिगजा,
0: साध संग पे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध मिटे संजोग,
0: साध की महिमा भेद न जाने, साध की उपमा तय कुंते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का ना ही अंत,
1: साध की शोभा सदा व्यंत,
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची,
1: साध की शोभा

0: संसार
1: ब्रह्मज्ञानी के
0: पसे ब्रह्म संग
1: ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्मज्ञानी अमृत त्यागत
1: ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्मज्ञानी के कर्ता आनंद।

0: एकादश पर भागी पाई है
1: राम
0: ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: राम ज्ञानी और परमेश्वर
0: राम ज्ञानी की कीमत ना है
1: राम ज्ञानी के सगल मन माए
0: राम ज्ञानी का कौन जाने पेद राम ज्ञानी का कथिया न जायो देखर
1: राम
0: ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: राम ज्ञानी की कद ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: राम ज्ञानी का अंत न पार
1: राम ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: राम ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: राम ज्ञानी
0: मुक्त जुगत जी का दाता
1: राम ज्ञानी विधाता
0: राम।

विरिंजन जतस साथ की तहत संसंगेत साथे जाने आप उसको मंदा मन की वासना मध्य धरे नान कोट में देखो ऐसा बस बिजन की पायते हुए पिन इस वैष्णो का निर्मल धर्म केवल भक्त की तुम संग्राज सब ऊपर हो कृपाल ज्ञान को वैष्णव प्रमुख पावे सगल त्यागे दुष्का संग कर पूजा सगल पार ब्रह्म कर पूजा सगल पार ब्रह्म विश्व गति की मत उत्तम होवे मन धन प्रेम संप्रीत ज्ञान के सबोति भगवत को पावे राम नाम आत्म सुधे उस पंडित के उपदेश जग जीवे

0: शांति के दुखन आर जकटे
1: संत के दुख जमते नहीं छूटे
0: शांति के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुख नरक में पाए
0: शांति के दुखन मत होए मिली
1: संत के दुखन सोपते हीन
0: शांति के हते को रखे ना कोई
1: संत के दुखन थान प्रष्ट होए
0: शांति के पाल कृपा जे करे
1: सत्संग सिंधक पी तरे
0: शांति के दुखन ते मुख पवे
1: संत के दुखन काग जीव लवे
0: शांतन के दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन तिल जोन किरमाए
0: शांतन के दुखन तृष्णा में जले
1: संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: संत के दुखन जीत जाए
0: संत दुखी का था को नाहे
1: नानक भावे तो पीगत पाए
0: संत का निंदक महा दुताए
1: संत का निंदक के निकट न पाए।

0: नानक ने निरंजन जानिया
1: जिसकी जानो कृष्णा पूजे
0: सर्व रोग ते वार्जन रहत ग्रस्त में सोई निर्वाण
1: जिसकी गड़िये जब की वासा
0: नानक से न लागे दूर
1: सो सांत से दा नहीं डुलावे
0: सो से रुकाओ की सर्ण रहे
1: अपने कार्य में आप समाया
0: गुरु प्रसाता सब जिया
1: नानक सो तुम सो ये सूल
0: आपन जदा भी करे
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल मैं आप अनेक जुग कुदरत ताप ताप तार तार हो ब्रह्मांड आप जो पाए न नानक जाप सगल संसार उदर तिन मंत
1: प्रभु के सेव दुख विसारण
0: आपे में
1: गुरु का शब्द जपे निहाल
0: विष्णु कृपा करे बट पावे नानक गुरु को गुरु करमान

0: से फिरता कोई नाए,
1: मेरे सदा हर
0: जाओ प्रभा पे आप,
1: किया कछु न होए,
0: ये सब प्राणी लोचे कोए,
1: इस बे नाही तेरे किछ काम,
0: कतनाने जब एक हर नाम,
1: रूपवंत हो नाही मोहे,
0: प्रभु जो सगल कट सोए,
1: बनता होए क्या गो गर्भ,
0: क्या सब सुख का दिया गर्भ,
1: अच्छुरा जो को कहावे,
0: सबकी कला बिना कहता है,
1: जे को हुए बहे दाता,
0: इस दिन हार जाने का वार,
1: जिस गुर पर सा टूटे हो रोग,
0: नानक सोचत सदा रोग,
1: थामे थमन
0: जो
1: पाख नाव चर तरे
0: चरण लगत निस्तरे,
1: जो अंधकार दीपक पर गास,
0: दर्शन देख मन होए विगास,
1: महा उद्यान में मार्ग पावे,
0: जो साधु संग मिल जोत प्रगटावे,
1: जिन साधु पाछो दूर,
0: नानक की आलोचा पूर,
1: मन पूर काहे बिलाये,
0: पूर्ण के काल क्या पाये,
1: सुप्रभ देवन हार,
0: अवर त्याग दुख से चितार,
1: जो किच करे सुई सुख मान,
0: भूला काहे फिरे अजान,
1: कौन कष्ट आई तेरे संग,
0: लाटरे और असलो विपतंग,
1: राम नाम जप हृदय माए,
0: नानक पसे दी कर जाए,
1: जिस वकर को लैन तू आया,
0: राम नाम संतन कर पाया,
1: सज अभिमान ले मन मोह,
0: राम नाम हृदय में तोल,
1: नाथ केव संते संग चाल,
0: अवर त्याग भिक्षा जंजाल,
1: तन कहे सब कोए,
0: खुजला दर गए सोए,
1: हे व्यापार बिरला व्यापार,
0: नानक ताके सब बलियारे,
1: चरण साध के तोई तोई पियो,
0: हर साध को अपना जियो,
1: साध के दूर करो इस नाम,
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान,
1: साध सेवा वड पागी पाई,
0: साध समर कीर्तन गाइए,
1: अनेक बिगनते साधु राखे,
0: हर गुणगाए हम प्रस्ताखे,
1: ओट गही संते दर आया,
0: सारा सुख नानक तै पाया,
1: तक को जी वालन हार,
0: भुखे को देव अदान,
1: सर्व निदान जाकी दृष्टि माए,
0: गुरु लिख का लेना पाए,
1: सब किस तिस का ओ करने जोग,
0: इस दिन दूसरा हुआ न होग,
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी,
0: सब के उच्च निर्मल करनी,
1: कर कृपा जिसको नाम दिया,
0: नानक सुधा निर्मल किया,
1: जाके मन गुरु की प्रतीत,
0: जनावे हर ब्रह्म चीत,
1: भगत भगत सुनिए ते
0: लोया, जाके हृदय को होए,
1: सच करनी सच ताकी रह,
0: सच हृदय सच मुख कहत,
1: सच दृष्ट सच आकार,
0: सच वर्ते सच

0: दारे संज्ञा ज्ञान
1: नाम के तारे आकाश बादल
0: नाम के तारे सर्वकार
1: नाम के तारे पूरे सब
0: नाम के संग उतरे सब सर्वन
1: कृपा जी सपने नाम लाए
0: नारु चौथे पद में सो जल गत पाए
1: सत जा का सत प्रसान
0: पुरख सत केवल प्रधान
1: सूत सत सत जा की वाणी
0: सत पुरख सब माए सुवाणी
1: ब्रह्म जा की रचना सत
0: बोल सत सत उत्पाद
1: वाणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाए तिसे सब फली
1: नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत दान गुरते पाई
1: वचन साधु उपदेश
0: सत जय जन जा के हृदय प्रवेश
1: पूजे जे कोई
0: नाम के पता की गत होए आपे जाने अपनी मित गात
1: विशिष्ट करना और
0: अगर अभूत करत विचार
1: कीमत ना जाने की
0: नानक जो तिस पावे सो बतिया
1: मन विसम भय विस्मार
0: दुर्मुदिया दिसाया स्वाद

इसके संग सिख मुदे नानक हर गुण गाओ अस्ति सेव को सदा दयाल गुरबचनी का नाम उचरे गुर का सिख बिकाते हटे गुर का सिख बड़ पागिए नान सब सिख को चीना सुमारे गुर की आज्ञा मन में सहे हर नाम दे सत्य है इसे के कार्य रास इसको प्राप्त स्वामी नानक को सेव गुर की मतले सो सेव परमेश्वर की गत जाने अनेक बार को कब जाओ आठ है पाद मुलाग्रता एक के आप नहीं किछ परम नानक ऐसा गुट पागी पाई है पर से चनकत ने मन रीत पाद रंग की दर गेत हुए मन संतो का संपत्या ने मगर इस पे के अवर संत नानक इस पावित लय मिलाए सद्गुरु पूर्ण वेग अगर वो चित्र निर्वाणी ताकि युग ने न पाई जन कम हृदय सिमरे नानक प्रसाद सब जपने अमृत पीवे अमर सो होए जाके मन प्रगटे गुरदास सच में सेवक को दे मन में राखे हर हर एक नानक परमो दुख कटे न से नर पिया दुख काटे पाई साधु के पूर्ण उपदेश से सगल व्याध माते के न से सारा सब जप नाम मुरारी सुनान घर जस सर्वन

0: प्राणधार
1: सो होए पुनी
0: भग पाए लावे मनीत
1: गुणियार नीच अजान
0: नानक तुमरी सर्व पर भगवान
1: कुंट मुक्त मोख पाए
0: एक दिन भर के गुण गाए
1: नित राज भोग बढ़ियाए
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: को भोजन का पर संगीत
0: रसना जब भी हरानी
1: अलिस करनी सो बातन वंत
0: ते देव से।

हरे कृष्ण अवतारी अपन सुन समाद जन चह न जापत जवापे आप जब अपन आप आपार ब्रह्म अपन के लाभ बरती जा जब होवत प्रभ केवल तनी जब एक हर अगम पार जब निर्गुण प्रभ सहस पाए जब आपे आप अपनी जोत तरे अपन चल तब करने हार अविनाशी सुख अपन आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अभिगत गोचर प्रभ एका जब नाथ निरंजन गोचर गादे।

0: पै गावत
1: नरको सब बचावत
0: आल जाल माया जंजाल
1: मे हो पर पे पार
0: सुगमान अपमान
1: प्रकार कियो बखियान
0: अपन के लाभ कर देखे
1: सब चेतो नानक एके
0: जय अभिगत भगत आप
1: जय पसर प्रसाद संत प्रताप
0: तू पाका पे तनी
1: उनकी शोभा उन्हु बनी
0: आपे कौत करे नंद चोज
1: आपे भोगे निर्जोग
0: पावे जिस अपन नाय लावे।

सर तृष्णा बिनस जहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बन

0: एक ओंकार सदगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिद्धांत के देख फ्रियो कर जोग जति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कहो न देखित प्राण प्रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे पारी पुजान के पूप पली बिदन्यावत शीस न जात बिचारे जीत फिरे सब देश किसान को बाजत टोल मृदंग नगारे भूत पविक पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे तीरथ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बिसेखे कौन आहार जति जत्तार सबे सुविचार हजार के देखे
1: भगवान
0: सुध सिपा दुरंत दुबासु साच सना दुर्जान दलेंगे
1: परे मन में कर पर्वत पंखा लेंगे
0: तोर अरीन मनोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे वीर पार बड़े बड़े यार बिचारे सार की तार पछैया गाड़े गडान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया दानव देव फनिंद निसाचर पूत पविक पवान जपेंगे प्रतापन बाट जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादब जौन त्रिलोक को राज करेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो बास कियो बिख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो
1: साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभायो
0: काहू ले पाहन पूछ तरे हो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो।

0: तुद कर्म कमाया,
1: के कर्म कमाया तुद शरीरा जातु जग में आया,
0: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया,
1: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया,
0: कह नानक के हो श्री प्रवान हुआ जिन सदगुरु स्यों चित

0: संकट मिटे दर्श द्वार होए। वाहे गुरु जी का खालसा,
1: वाहे गुरु जी की फतेह।
2: पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा,
1: रंग परंग अनेक न जापन कर।

सचिले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच था पर जानिया जा तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु ने पुछ के बैरे करे निवास सच सबना हुए दारू पाप कड़े तो हुए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान मिंडत लिखात

पूरे के गुण गाओ अष्टपदे पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे एक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या कुतरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अनुसा कर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुरपुरी नमस्कार के कुशल सहजनंद साध संग बज परमानंद नरकन वारो धारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित भव नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन मलिक लाल हे रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कैमल लागा हर रंग जय जय शब्द ना हद वाजे सुन सुन अनंत करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महात कह माथे नान कुदरे तिन कैसा ते सरन जोग संसर नहीं आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर पय समरे अमृत नाम साध संगलैन सुप्रसन्न पे गुरदेव पूर्ण होय सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन सुन कहते कर प्रसाद या प्रभधारी नानक ने भी की पमारी प्रभ की उसत करो संत मेत सावधानी का कर चित सुखनी सहज गोविंद गुण नाम जिसमन वस सुहोत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होय प्रधान पुरख प्रगट सब लोय सब ते उच पाए स्थान बहु न हो वया मन जान हर तन खार चले जिन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत हृदय रमने ते बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मत सकल देवदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक तिष्ठेता एहे फल तिस जन कै मुख पनी गुरु नानक नाम बचन मन सुने हो निधान जपै मन कोई।

आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ जीत। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ देहे तत्काल उधारे।